फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Saturday nights with Nads.
1: Once you start watching, you do not stop.
0: Friday nights with Shivy.
2: Just want to relax and we just want to... You don't want to do too much thinking.
0: This is Sunrise Radio.
3: दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: taken from the soundtrack of Main Wapas Aaunga. दीपाली सहाय ऑन द वोकल्स, ए आर रहमान का संगीत, इरशाद कामिल के बोल, तेरे पास में। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 26th की सुबह शबनम साही के साथ। द लास्ट वीक ऑफ समर हॉल्स फॉर मेनी बिफोर द किड्स आर बैक इन स्कूल एंड इट्स ट्रूली बिजनेस एज यूजुअल, बैक टू वर्क, बैक टू लाइफ एंड रियलिटी। हाउ आर यू स्पेंडिंग दिस वीक? 07925-702-72 the number to WhatsApp me on. Good morning. The hit of the hour with Jaimin Foods. Make snack time even crunchier with Jaimin Grills. Lemon chili pillow, masala wheels, peri peri peri and so much more. Jaimin Foods, the ethnic taste of India. Welcome to your daily dose of food trivia, recipes and food facts on Sunrise Radio. Brought to you by Suhana Foodies. Suhana, maza aa gaya.
1: Turn your breakfast into a quick lunch. Prepare Sohana's cuppa poha as instructed. Then toss in finely diced tomatoes, sweet corn, fresh coriander, and a squeeze of lime juice. It creates a refreshing, tangy, warm rice salad, ready in under 2 minutes.
0: This daily food feature was brought to you by Sohana Foodies. Try their cuppa poha.

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: ये है संगम। पढ़ लिख कर आर्किटेक्ट बनना था इनका ड्रीम, लेकिन ऊपर वाले की थी कुछ अलग ही स्कीम।
2: A house full of chaos, a girl full of dreams. Watch a heartwarming story of love, family and emotions. Watch Bareilly Ki Bachchan Monday to Friday at 8 PM on Colors.

दिस इज व्हाट यू कॉल अ गोल्डन लेगेसी, जब शायद आपके नाम से ज्यादा लोग आपके काम को याद करते हैं. ओरिजिनली बाय मैडम नूर जहां, गिवन अ न्यू लीज ऑफ लाइफ फॉर अ न्यू जनरेशन बाय नाइट वॉइड द ईडीएम मिक्स. माही किथे रह गया.

0: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is 40. And to celebrate, there's a gift for you of £40 per adult off featured holidays. Plus, free transfers, spa vouchers and excursions. Discover more at brightsun.co.uk/40.
1: 10:50 on a Wednesday, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो शबनम साही के साथ, मेरा और आपका साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 के बीच. Vicky in Twickenham, Mr. Khan, thank you so much for your messages. Mr. Khan is going to send me his share in the next hour, I'm hoping. Nashatar Kaur, thank you so much. I had a wonderful time away. Beautiful tributes to Dolly Parton pouring in from around the world. जो लोग अपने लिए जीते हैं ना वो तो जीते हैं, लेकिन अपने हिस्से की खुशियां, अपनी दौलत, अपने privileges and comforts जो लोग selflessly दूसरों के साथ बांटते हैं, शायद उसी को जीना कहते हैं, right? Rest in peace, rest in power, Dolly Parton. Good morning.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।